0: με Ναβίν Σαξένα. संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान

0: लाखों श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a humanitarian approach should guide the handling of the long-pending issue. The matter figured prominently during Foreign Secretary Vikram Misri's discussions with the Sri Lankan leadership during his official visit to Colombo. Mr. Misri arrived in Colombo yesterday for a day-long visit. He held separate meetings with the President Anura Kumara Dissanayake, Prime Minister Harini Amarasurya, Foreign Minister Vijita Herath, and Foreign Secretary Aruni Ranaraj. During the talks, Mr. Misri discussed issues pertaining to fishermen and requested Sri Lanka's cooperation for the early release of fishermen and boats detained in the island nation. The fishermen issue is a contentious one in the ties between India and Sri Lanka, with Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Park Strait and seizing their boats in several alleged incidents of illegally entering Sri Lankan territorial waters. India has advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. In response to media queries regarding comments made by Pakistan Foreign Minister on the so-called Yom

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों

0: भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपने तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings which provides every member an opportunity to raise issues. Mr. Birla added that Parliament is meant for discussion, for raising questions and for meaningful exchange of ideas. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m.

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी

0: इसकी जानकारी, तो आप आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
1: तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें।
0: बिल्कुल।

0: अदाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में
2: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
0: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
6: हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक कैल देव की अम्मा जो कि पर्यावरणविद हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देव की अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देव की अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देव की अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
7: और देव की अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
6: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देव की अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
7: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
6: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज़ की शुरुआत करी है ना कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। और देव की अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
7: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंक मड़ी जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्यौहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देव की अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहाँ पर हैं।
6: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियाँ और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देव की अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के

0: जाए, मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
1: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
0: बिल्कुल, उनका कहना है हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
1: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल, और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी ठेंकमणि कहती हैं 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं, इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
1: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
0: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
0: और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी डोर से तो प्यार की बंध जाते हैं
1: बिल्कुल बंध जाते हैं क्योंकि प्यार चीज़ ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहाँ पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है, और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है, है ना?
0: और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है, कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है, और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्ट चित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरा आगे तुम्हारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं, और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
1: और इसके साथ ही सुजनी जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
0: और बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है, और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी,

0: कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है, जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
1: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आदि कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
0: तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है, सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं, जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं, तो इनको सहेजना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, इतना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा है, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, लेख हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाकिया जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो, हमारे
1: प्यारा सा था ना कि रुका ही नहीं गया।
0: देखो हमारे साथी लिखते हैं, आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन के अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमें जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीज़ों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें, तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा है भी और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को

0: अब उतनी तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएँ लुप्त प्राय ही हैं और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्णन कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको इसलिए इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुनें।

0: जब तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब जब ये चिट्ठियों के संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है, है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थी, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
0: क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आती। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहां, चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छिन गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना, उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता, आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था, डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकिया लेकर आता था। कागज का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था, चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है, मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
0: और हमारे साथी लिखते हैं आती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देख कर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है, मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब मैं बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था, कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इत्र भी डाल दिया करता था।
1: चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था,

0: और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हाल चाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं।
1: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्यौहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दें।
0: बिल्कुल। अब एक साथी है जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियां होती थी है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
1: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना,
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो एक हमारे साथी हैं लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है, और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपनी प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोजपत्र और ताड़पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज कलम स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार भाव भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है, और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श कर व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट और इन सब चीजों में कहां मिलती हैं।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता थी, उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे।
3: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
2: चलो एक गीत सुनते।

0: तो आती बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में कैसे रखें सफाई, तो इसके लिए देखो घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: और एक साथी है जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें, पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें
0: बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है तो जहां भी आप देखें तो वहां पर आप इस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे, और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती, तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है, तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी करुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा, सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने तो देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों बताइए श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है श्रावण का तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा जी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है,
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती है ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामूहिक के साथ और जो लिसनर है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है
0: जी।
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छे विचार है आपके और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए, अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी, तो ये बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा, चाहे वो यहाँ का डल लेक हो या की जहलिम हो, यहाँ का लेदर वैली हो, तो उनमें बहुत पानी आया था तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए

0: और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं, अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा,
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनके लिए बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके, और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान, का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, मैं ना बोलूंगा मैं ना बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटोक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ। मैडम
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए,

0: अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है, बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला रातने वो उठाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा?
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना, और महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी।
1: ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, हजारा सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर की आवाज में सिंदूर फिल्म।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटाच छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: खूब बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी बढ़िया होने वाली है, बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात को।
1: हाँ, पानी को लग रहा है। अभी मैं मक्का खेत में स्कोल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे भरे खेत की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी जी।
0: बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम है, गाने की बोल है तेरी इश्क में पागल हो गए दीवाना तेरा रे।
0: सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालराना का इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पर थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहले आप मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन राग नहीं लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस।
2: इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने से मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम,
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का धान सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा। तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेती बाड़ी में चारा होता है, उसमें लाते हैं गट्टा बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो विविध भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैं।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुनासा बोल रहा हूँ। मैडम जी, आपसे पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे, इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए, आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं। जो मान लीजिए विविध भारती के हेलो परमार, सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी, मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद, मान लीजिए बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया, गेहूँ।
0: ये कब पक जाएगी फसल
1: जी? आ जाती है उधर गर्मी तक, आ जाती है होली तक।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी। आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में? वहीं रहते हैं आप?
1: यहाँ लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं, अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर? कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते हैं, चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी कथा है जी वाला।
0: अरे, कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए आप 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ मुझे, मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए, मान लिया हमने, ठीक है, सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रही है?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कावड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता है दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कावड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का
1: गीत सुनते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: मैं ये बॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं, लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है सुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी।
2: बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए,
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे?
1: कैसा है, भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर? झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था आज का।
0: हाँ क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या? उसके बाद जो नारियल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: उसको पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा,
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर शिकरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है भीमाशंकर पूना बम्बई कोकण वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
0: समझ गई मैं।
1: इधर बोले तो ये माथे पे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
1: रहता है। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है रीत रिवाज, वो चलते आने वाला रीत रिवाज से चलता है, और उसकी मर्जी भी अगर कुछ होता नहीं।
0: क्या बात कही।
1: मराठी मध्ये एक आभंग है, अरे अरे माणूस साधू वेडा का खोळा रे, देवा पुढे माणूस पाला पातोळा रे, घडी घडी नाही कुणाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिला।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घडी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से।
1: तुमको बोलू क्या, सिलोन हाल का रेडू था, उसके पास भी धरती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे
0: जी।
1: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, तुम्हारा सवा छेकु भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं।
0: बहुत सुंदर,
1: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत हमें, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साईं बाबा का।
0: अरे वाह, कौन सा?
1: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिमरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी पीरियड क्या कह रहे हैं?
1: मैं एसएससीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में लाइव में ईमेल में और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्का भाग, और गीत के बोल है मस्तों का झुंड, और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है, और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल किया है, सूर्य की रोशनी है, बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228672888, दूसरा नंबर 02240024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और लक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्राम समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के

0: पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउस होल्ड आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेब बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेब बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशानी आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16

0: 17 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
3: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है इंडिया

0: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం నిలయమైన సమయం 9:30. చట్ట మరియు న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని న్యాయ విభాగం ఎపిసోడ్ 5వ భాగం ప్రాయోజిత కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది.
1: On senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder, Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya policy makers, NGOs, civil society ya wider society ko isme integrate karna ho. Ek broad picture ki Bharat धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय यह है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन,

और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था, जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ, वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनसे चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाज़ों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज़ को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है, जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से, कि ये एल्डर अब्यूज़ करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में, 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं, सन्स और डॉटर्स, वही इसको, और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज़ तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज़्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज़ के, तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज़ के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज़ के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है, उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते, और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून हैं उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज़ के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज़ है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज़ है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीज़ें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज़ माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज़ के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति, उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही

0: नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएँ, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: You have been listening to a talk on Senior Citizens Care System, Vulnerability to Abuse, Welfare, Awareness and Strengthening Access to Justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में हैं या 50s में हैं या अर्ली 60s में हैं, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना। सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज़ क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं। और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामयी वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और इसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन विमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलके भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age-friendly India and age-friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You have been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: Meerintaraku Nyaya Mariyu Nyaya Mantritva Shaka Paridhiloni Nyaya Vibhagam episode 5va bhagam prayojita karyakramam vinnaru. Akashavani Nizamabad kendram nilayamla samayam 9 gantala 45 nimshalu. Ippudu meeru vintaru sinigeetalu.

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఇప్పుడు సమయం 11:00 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మై శక్తి సింగ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है. एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया.
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी. अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी. जन जन जुड़ गया. अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया. मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है.
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी. इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा. लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है. इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था. अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था. संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया. राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया. लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है. सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं. राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की. ओडिशा के चांदीपुर

0: स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned for the day. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu today. During their conversation, the two leaders reviewed sustained progress